पाया, खुशियां लेकर लौटा दर से, दुख लेकर जो आया। ओ माँ, नो वन कैन एस्टिमेट द लिमिट ऑफ योर पावर। दैट पर्सन हु कम्स टू योर डोर टू प्रेजेंट हिज डिफिकल्टीज लीव्स एक्सट्रीमली हैप्पीली। यू आर वन बट योर नेम्स आर मेनी।

0: ए खजूर, बाप की गाड़ी समझा गया?
1: टसन क्यों देता है बे खटारे वाले, हम तो मर्सिडीज रखने वाले हैं।
0: मुंह देखा क्या आईने में? अरे हटा सावन की घटा। ए भाऊ समझ जा, सुधर जा, पतली गली से निकल जा, चल चल चल।

दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। लक्ष्मी करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां। मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते।

प्रेम सुलिस अयोध्यापति रामचंद्र की जय। मैं जय रिव टुनाइट माय कथा इज टेकन फ्रॉम अयोध्या कांड ऑफ रामचरितमानस। एज वी एक्सप्लोर अ डिस्कशन दैट टुक प्लेस बिटवीन लक्ष्मण एंड निषाद राज। निषाद इंडीड भगवान श्री राम सीता देवी लक्ष्मण दे वेंट एंड नाउ देयर जर्नी बिकेम दैट जर्नी टू स्टार्ट इनटू दैट फॉरेस्ट एंड दे मेट विद दिस beautiful tribe of people. Guha, who is the head of that tribe or that clan of devotees or people at that time, indeed Bhagwan Shri Ram met with him. Meeting with him, my dear devotees, when Nishad ji heard Bhagwan Shri Ram was on his way, he made all provisions to welcome that Lord.